अपना अनमोल खजाना गुरु नानक ने साड़ी झोली विच पाया है। सानू इस अनमोल खजाने दी पहचान हो जावे। वाहिगुरु मेर करे इस अनमोल खजाने तो असी लाभ ले सकीए। सत्संग जी, जपजी साहब दी इतनी महानता है, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों गुरु अंगद देव जी दे हिरदे दे विच अपनी जोत टिकाई है, अपना रूप बख्शिया है, एक बारी प्यार ना लाखो सतनाम। सत्संग जी, जदों गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव जी दे हिरदे विच जोत टिकाई, अपना रूप बख्शिया, कुछ बचन भी कीते,

प्रभु जी जरा गल सुना दे संसार के विकारां दे बंधना तो जरा बचावे है कोई ऐसा सज्जन मित्र है कोई ऐसो हमरा मीत सकल समग्री जियो हियो देओ अर्पो अपनो जीत ओदे नाल पक्की सांझ पा श्लोक वारा ते वधीक पढ़ने साहिबा ने किया जे

उसने बड़े तरले ले। भोजन छड़ के ना जाओ, आज खुशी का दिन है, मेरे घर लड़का पैदा होया। कहन लगी कुछ भी होवे, असा भोजन नहीं छकना,

कहने लगा मेरे घर बच्चे ने जन्म लिया, ब्राह्मणा ने प्रसादा नहीं छकिया, कहंदे ने तेरा घर सूतक वाला। ए दुखी बैठा सी, किसी ने कहा दुखी ना हो। इत्थे धन गुरु नानक साहब आए ने, ओ सूतक पातक नहीं मनदे। इत्थे एक गल याद रखना, जिथे कोई जन्म लवे उथे कहा जांदा है सूतक, जिथे कोई मरे उथे कहा जांदा है पातक। इस प्रेमी ने कहा तू दुखी ना हो, गुरु नानक साहब दे कोल जा, ओ सूतक पातक नहीं मनदे, इन्हां परमा वहमां विच नहीं पैंदे। ए प्रेमी धन गुरु नानक साहब दे कोल आया ते बेनती कीती, महाराज मेरे घर बच्चे ने जन्म लिया पर ब्राह्मणा ने भोजन नहीं छकिया, कहंदे ने तेरा घर झूठा है सूतक वाला। धन गुरु नानक साहब ने अपने सिखां नूं प्यारियां नूं भेजिया, जाओ तुसी प्रशादा छक के आओ। सिखां ने प्रशादा छकिया, उन्हां ब्राह्मणा नूं पता लगा ता उन्हां नूं इस गल दा मन विच बड़ा रोस जा गया। ए सारे ब्राह्मण इकट्ठे होके धन गुरु नानक साहब दे कोल आए और गुस्से नाल कहन लगे, महाराज तुसी धर्म ते नहीं चलदे, तुसां धर्म दे उल्ट काम कीता। धन गुरु नानक साहब जिन्हां दे चेहरे ते कदे गुस्सा नहीं आया, चेहरे तों नूर टपकदा, अखां विच नाम दी लाली, दर्शन कीतिया मन नूं ठंड पैंदी।

जेड़ी विचार करनी है बैठ के करो, क्योंकि विचार बह के हुंदी है, शांत मन नाल हुंदी है, तलखी नाल नहीं। बैठो, अपनी गल सुनाओ।

जश, गंधर्व, तुरक, हिंदू नाम वक् हन, पहरावे भी वक् देश भी वक् और इन्हां चीजां दा असर इंसान ते हुंदा है। पर सतगुरु जी कहंदे ने अगर आपां मन विच विचार करिए ते सानू किसे विच फर्क नजर नहीं आवेगा। क्यों नहीं आवेगा?

अल्लाह अपेक्ष होई कुरान ओ कुरान ओही हिंदू कुरान पढ़द मुसलमान कुरान पढ़द मुसलमान अल्लाह नु याद करद हिंदू राम नु याद करद ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह रहे ने अल्लाह दा नाम लैण वाले है कुरान शरीफ पढ़न वाले है मुसलमान नु ए उपदेश हिंदू नु की उपदेश ऐ पुराण पढ़न वाले हिंदू ऐ राम नु याद करन वाले हिंदू अपने मन विच ए विचार कर एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है वो अपने अल्लाह नु याद करता है एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है वो अपने परमेश्वर नु याद करता है टंग दोनों दे अलग ने एक निवाज पढ़ता है एक पूजा करता है पर ए सोचिए दोनों दा मकसद की है मुसलमान अल्लाह नु याद कर रहे है हिंदू अपने राम नु पिया याद करता है मकसद दोनों दा

खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य और हिंदू और मुसलमान दो वटियां कौमा और दो नादाई झगड़ा सदियां तू चलिया आ रहे है। पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन। भाई साहब जी बयान कर दे, चार वर्ण चार मजहबां

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने। अगे भाई साहब की कहते हैं,

इस पौड़ी दे विच भाई गुरुदास जी ने इस्लाम धर्म दा जो असूल है उहदे बारे दस्या कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा इह उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि इक जालम बादशाह सी उसने यह हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना। तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती, साडे हिंदू धर्म की रक्षा करो। ता गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा की। और गुरु नानक साहब के अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे ढाए जाते रहे, भाई गुरुदास जी बयान करते हैं।

चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। ए मनुख हृदय रूपी वेड़े विच परमात्मा परमात्मा रूपी नाम दा जे तू चानना कर लवे अज्ञानता रूपी हनेरा हमेशा हमेशा ले खत्म हो जाना है। जे परमात्मा रूपी नाम दा तू हृदय रूपी वेड़े विच चानना कर लवे चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। आओ आपा मिल के इन्हां तुकानों पढ़िए कोई रसना खाली।